0: मैंने जो आयत पढ़ी है अभी, अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन अल्लाह अदल का और एहसान का और अकरबा की जाने वाली अता की तरह अता का हुक्म देता है,
1: बेशक,
0: और बेहयाई और नापसंदीदा बातों और बगावत से मना करता है, और तुम्हें नसीहत करता है कि तुम इबरत हासिल करो, क्योंकि पिछले लोगों की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। सादा अल्फाज में हमें इंसाफ पसंद, मेहरबान, रहम दिल और दूसरों के लिए फ़ायदा मंद बनना चाहिए और हर किस्म की बुराई और जुल्म और फसाद से बचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है।
1: जी मौज़े सामिन, हम रबी सिलसिला मास्टर टर्न गयूर अहमद साहब से ये दीन क्यों ज़रूरी है इस टॉपिक पे हम उनसे सुन रहे थे। तो अब हम अपने प्रोग्राम के अहतमाम की तरफ बढ़ते हैं। हमसे रबता करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट्स नंबर नोट कर लें और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें। हमारा फ़ोन नंबर है 0800-947526। एक मरतबा फिर नोट फरमा लें 0800-947526। और हमारा ईमेल एड्रेस है info@ahmadiyya.org.nz। एक मरतबा फिर नोट फरमा लीजिए info@ahmadiyya.org.nz। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।